विक्रम संवत 2082 शालिवाहन शके 1948। आज रविवार श्रावण कृष्ण द्वितीया अर्थात 30 ऑगस्ट 2026।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोताओं सुनते हैं भरत व्यास की गीत रचना। संगीत है चित्रगुप्त और स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

श्रोताओं, अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948। आज रविवार, श्रावण कृष्ण द्वितीया, अर्थात 30 ऑगस्ट 2026।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।

श्रोताओं सुनते हैं भरत व्यास की गीत रचना। संगीत है चित्रगुप्त और स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।